0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टी मुला,
2: किन फर्सी?
1: के तिमी मलाई अरू भन्दा साच्चै माया गर्छौ?
2: एकदमै हो, 100% हो ल।
1: कसरी?
2: मैले हिजो राति सबै लिस्ट हेरिसके।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट बराबर एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कमेडी कैप्सूल,
2: अडियो अडियो,
3: एक कान दो कान मैदान,
2: इसमें छ मजा,
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: संस्कृत शिक्षकले सोध्नु भयो, तमसोमा ज्योतिर्गमय यसको अर्थ के हो? तब विद्यार्थीले भन्नु भयो, तुम सो जाओ मा, मैं ज्योति का घर जा रहा हूँ।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान, इसमें छ मजा
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन ए ज्वाइँ, छोरीलाई धोका दियौ कि क्या हो? खुब खुसी देख्छु त।
2: कसरी धोका दिनु र ससुराबा, पाँचोडीकै बराबरी माया लाग्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: दियो दियो
4: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमी हाँसिरौ, मेरो मुइयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ, गुनगुनाइरौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो एडियो
0: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: आजकल किन स्कुल जाँदैनस् हो नाति?
2: हजुरबा, राम्रो विद्यार्थी चाहिए, घरमा लिन आइहाल्छन्।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो
4: एकान्दै कान मैदान, यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: किन फर्सी त्यस्तो रक्सी खाने मान्छे कसरी छोड्यो?
2: पुरै बत्तल सकाएर छोडे नि।
0: कमेडी क्याप्सुल
3: अडियो अडियो एकान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: मैले यो हाम्रो समाजलाई कहिल्यै बुझ्न सकिन। केटीहरूले चाहिँ छोटो लगाए मोडर्न, अनि लामो लगाए फेसन रे, अनि हामी केटाहरूले चाहिँ छोटो लगाए भाइको, अनि लामो लगाए चाहिँ दाइको रे। कोही तरिका हो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ओहोई ओहोई ओहोई होइन, आज निकै मुडमा छौ नि, के भयो गान्टे मुला?
2: आज मैले तो पुलिसलाई उल्लु बनाइदिए नि त फर्सी।
1: कसरी?
2: त्यसले मलाई गाजर भनेर पिट्नुसम्म पिट्यो, तर म त गान्टे मुला हो नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: दियो दियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: रेडियो रेडियो मोबाइल से क्यों प्यार, रेडियो रेडियो मोबाइल से क्यों प्यार,
1: एफएम 106.3
2: रात बत्ती बोले झप्पा ब्रेक लायो।

0: कमेडी क्याप्सुल। तिमीलाई के थाहा गम के हुन्छ? दुःखको बारेमा होला। तिमीलाई के थाहा गम के हुन्छ? तिमीले गम कहिले जाने छौ? छैन छैन, तिमी त गमबाट धेरै टाढा छौ। हो, तिमीले त सधैँ फेभिकोल प्रयोग गर्छौ।
1: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो।
1: एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी कैप्सूल।
1: एक हुल इंडियन कलेज का केटी हरु आंदोलन में निस्के साथ में आधा जस्तो केटा थी। केटी हरले नारा लाए हमारी मागे। केटा हरले भाने सिंदूर से भरो।
0: कमेडी कैप्सूल।
2: अडियो अडियो।
0: एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
2: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो एक कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्ने मन लाग्दैन।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: दियो दियो एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल
1: इङ्ग्लिशमा छ, सुनौ। बिफोर म्यारिज, बिहे अगाडिको कुरो। बिफोर म्यारिज रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिङ आई लभ यु। वाह, क्या भावना छ। त्यसपछि आफ्टर म्यारिज रोजेज आर डेड, आई ह्याभ फ्लू, यु आर माई हेडेक, आई किल यु।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो एडियो
3: एकान्दैकान मैदान,
2: यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल। तिमी हाँसिरहौ, मेरो मुइयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरहौ, नाचिरहौ, मुस्कुराइरहौ, सधैँ खिलखिलाइरहौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरहौ, नाचिरहौ, मुस्कुराइरहौ, सधैँ खिलखिलाइरहौ, गुनगुनाइरहौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ। कमेडी क्याप्सुल
1: अडियो अडियो
0: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
2: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: त आजकल किन स्कुल जानेस हो नाति?
2: आ हजुर बा, राम्रो विद्यार्थी चाहिए, घरमा लिन आइहाल्छन्।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो ओडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: यदि तिमी रमाइलो चाहन्छौ मेरा नाम जक्कर, वाह। यदि तिमी साथी चाहन्छौ हम तुम्हारे है सनम, वाह। यदि तिमी मलाई चाहन्छौ मैं हूं ना, वाह। यदि तिमी सहयोग चाहन्छौ हम साथ साथ है, वाह। यदि तिमी पैसा चाहन्छौ हम आपके है कौन।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: एडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान, इसमें छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: ऑडियो ऑडियो
3: एक कान दो कान मैदान,
4: यस मैं छ मजा
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एउटा समय थियो आम्मामा मोबाइल खत्रक्क खस्यो भने ब्याट्री बाहिर निस्किन्थ्यो, हिजो आज मोबाइल खत्रक्क झर भनेदेखि मुटु कलेजो फोक्सो आन्द्रा सबै बाहिर निस्किन्छ, के साह्रो माया लागेको।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

मात्र पुग्छ, न केही चताना भई न केही कोडारा। एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर, एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर। देशकै स्वादिलो रेडियो, रेडियो अडियो, एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मज्जा। मुख हान्नु जस्तो ए हजुर, एकपल्ट रेडियो त

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: एक हुल इंडियन कलेज का केटी हरु आंदोलन में निस्के साथ में आधा जस्तो केटा थी। केटी हरले नारा लाए हमारी मागे। केटा हरले भाने सिंदूर से भरो।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: एडियो ऑडियो।
3: एक कान दुई कान मैदान।
4: यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।